0: Τώρα μαζί με τη Δάρτα που γεγίζει από τα σαπάρ σε τέτοια έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα με τη μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τάρκα να τα γιλεύε χάρβαστε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβολ σε ρικρέ δι. Οστούλ κούρβολα να χωσούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चि कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपोई पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला वीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलसे आंद्रोन ला की गेट जान से बे गाले पर से मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ते मिला वीजी

एमजी भाई आज थोड़ा सा उर्दू में बातें करो, उर्दू मुझे बहुत पसंद है। एमजी भाई प्रोग्राम बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह, बस मुझे इतना आती है। हाँ हाँ हाँ अच्छा, धीरज तमन्ना फाई के कहना फातमा लंडीवाना। अस्सलाम वालेकुम भाई, जान जान परी बंग शड़ी खाना पटी खान दे आवाज उखी दे। धीरज तमन्ना यो जहान नाना वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अब्दुल खालिक साहब करक रेडियो बाने दे आवाज उखी दे। मंगल में लिखी सलरम नंबर दुकान दे मसारिश्मा टोल प्रोडक्ट मिलेगी सईदा। डीर जे तमन्ना नो मौलाना साहब चुकम एड्रेस थे आंसर नोट की। मंगल में लिखी साइबर प्लाजा देखे बर प्लाजे की सलरम नंबर दुकान दे मसारिश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट और सर मिलेगी। और दे सर सर चुकम लिखना अल्लाह की कमरदीन वजीर उमर देखे दे सर टोल प्रोडक्ट मिलेगी। और सर और सर चुकम लिखना बल चुकम लिखना बल खराब कल के आज खराब कल से इमदादुल्ला जन स्टोर सर हम टोल प्रोडक्ट मिलेगी। डीर जे तमन्ना मोली साहब यो जहान नना वैसे लिसनर द तारीखानो एम जी यो द परेशान लकज मरियो सलाम हावर यू और मामू जान और मसूद खान बनो से गान पखेर रगले करक रेडियो बने आवाज बिल्कुल क्लियर दे। और के की सदिंग मार्केट से रफीउल्ला और सारा टोल प्रोडक्ट मिलेगी। रहीम मुला सर मिलेगी, फरीद सर मिलेगी, साकिब सर मिलेगी, टोल प्रोडक्ट माशाल्लाह के की मिलेगी। धीरे से तमन्ना यो जहान मनना गुलाले देखे कि ना यो जहान मनना शुक्रिया वैसे मोस्ट वेलकम टू द शो स्पेशल सलाम टू तारिक भाई आवाज दे ओके दे मुस्कान खटक डेरे से तमन्ना जी। सलाम अलैकुम शाजी लकी मेरवतना 88.4 88.4 लकी अच्छा 88.4 करक 88.4 टांग और लकी रेडियो दे ग्लोबल 91 माने आवाज ओके दे माशाल्लाह डेरे से तमन्ना। सानी खटक दे अंबेरी केलना दो सलाम रे लिखी वैसे एमजी भाई आवाज दे ओके दे करक रेडियो बांधे। और तारिक सर सलाम अलैकुम सलाम डेरे से तमन्ना यो बेहद मन्ना वैसे यूनिक टेलर नेम द तथी नसरती ना एमजी भाई आवाज दे ओके दे पखेर अगले दर तवायू यो जहान मनना। और वैसे एमजी भाई नन खो अच्छा सही ढेर जे तमन्ना यो जहान मनना बस कला कला टेम द सिखेगी कना। और वैसे अच्छा सवाई सवाई वैसे भाई आज जो शो रिकॉर्ड है ना बिल्कुल लाइव प्रोग्राम दे लाइव प्रोग्राम दे सही 24 तारीख थे पगमा म्याज था। और चकम देखे ना 2026 साल दे और चकम देखे ना कम दे कम दे 8 मुहर्रम अल हराम दे सही था उस सुबह पत्थर तलक इधर भी बिल्कुल अरुजिंग प्रोग्राम के कलरान साहबान रवान दे अगे तुम कवर के ऊपर 0 सबने 0322 98 98 999 सुमरहा अवरे दुंगरी प्रोग्राम के मुसरा गडिन के

0: Yo sahaba, I'm a Arshi. No. Zo chuti hai na ya uncle Khalik Noor, uncle bo vi ya bo abid bhai vi ya bo vis bhai. Astita yo gift gatal dadir dekha. Rehan bhai Latifa hai, doctor. डॉक्टर मुताबिक का एक ही इलाज है कि तुम रोजाना सिर्फ दो ही रोटी खाया करो. मरीज ठीक है लेकिन ये तो रोटियां दो रोटियां खाने से पहले अच्छा दो रोटी खाने से पहले खानी है या खाने के बाद. एंजल हानी फ्रॉम बनो यार नन मो लतीफू ख्वानशता ना दखा लतीफू मजा मुश्ता ना दा पदनी तो जिदा वाले सलाम है ने यो गेस्ट को बर्थडे के क्वेश्चन डेर डिफिकल्ट दे द इनाम हासिल अवल डेर ग्रान दी गेस्ट को सारा आवाज नरजी डेर दे साइलेंट करना दा सवाल जवाब तब नफल को بس دا بالکل دا وہ کہے چے دے دا وجو نتا سو کہے ثواب مال رزی او بیا وے چے یو اے چے گل لا دینا گل لا ہم نے دیکھا بالکل دا سن فل کو نہ فل کو اور دے زیادہ ڈیفیکلٹی زما سوالات پ انشاء اللہ وی ڈیفیکلٹ خا او دا سور دے کہ انشاء اللہ بیا در تروڑ م نور سوالات ہم در تروڑ م او دا سی مطلب زبردست سوالات بھی دا سرپرائز نہ بھی تا سو بخپل ہو یے خا ना जी तासु चीटिंग करी दियो मैसेज रजी ची तासु सर सोक ते माते नुमा शे तो लास्ट के बदरते वाय मा खा इच ये हमारी दिलों पर राज करने वाली हैंडसम गर्ल अस्तादा इनकार ना पास में जान ला तन्हाई खुखा कड़ा खुले बला दे खुदा तपा शान पैदा में नकड़ो वाह जी जबरदस्त थैंक यू सो वेरी मच. और यान दमरा सख्त गर्मी खूबिया हाँ शो और पके सारा चार न कवि रेडियो अनुतावया
1: बात का बिल्कुल नहीं पता.
0: ओके दाजी थैंक यू सो वेरी मच जानमन. नेक्स्ट डे जचुटी ने अंकल अच्छी बात हिम्मत अच्छा हिम्मत मत हारो क्योंकि पहाड़ से निकलने वालों पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है. बेशक ऐसी बात है. सलाम भाई मैं दबनुना भाजी क्या गुलाबी उर्दू है जबरदस्त. वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच जहानमन. नेक्स्ट कहते हैं वही चीज हनो जियान दा ना जी जियान ना देखा
1: फजूल है मेरा
0: दाई दा सुखपल भाई दा मापो ख्याल सयान बवी या बो सुख अच्छा मैसेज कर इखपल नो मैंने दिल्ली कले हाँ ऐसे सयान है आई थिंक क्योंकि वाइस आप जैसा है आई एम अर्शी. ओके जी देखते हैं जो चुटी है ने अंकल सयान बवी
2: मायूस मत हो
0: मक्के बकतली शिखा दाखो सयान दा रेहानो एट्स मी दुरखनाई खटका पता बोल लगी जो चुटी है ने अंकल माशाल्लाह फेस वॉश डेर जबरदस्त रिजल्ट दा सन ब्लॉक बो हां इस्तेमाल हो इंशाल्लाह. ओके जी इंशाल्लाह एंड थैंक यू सो वेरी मच जानमन ना
2: सफीने डूबते भी है सफर लेकिन नहीं.
0: अस्सलाम वालेकुम दबनुना सफी केंगा बा बनू बाजार की चिरे मिलवी री
2: के रहता है खुदा वाकिफ है नाजर भी खुदा जाहिर है बातिन भी वही है हाल से वाकिफ.
0: वही ची ऑनलाइन मिलवी जी जवाब रोका. वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी मच यू जहान मन्ना. बिल्कुल जी दासो को खबर कवे ऑनलाइन मिलवी जी www.zinaya.com बतासो है दा ऑनलाइन हम तासो परचेस को ले शिखा.

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदा

रीड का मैं गई दो अच्छा साइड ढेर जो तमन्ना ढेर जो तमन्ना खेर खेर खेर खेर खेर गुजारा उतर के साइड हो गुजारा उतर के लश के शांत जी किम ने कहा कलरों ने साहबों ने तो हम कवर के और ते सर सर किम ने नतीरा हादर बनो बरोई न सुमरा दी मेरा रेडियो मन किम लिसन दी और दिंगरी और तलाशे प्रोग्राम से मिस्टर गाप फ्रॉम शिलाहा वशे और सर सर जी किम ने कहा नन नन नन सब के शामिल की।